0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: ए साहिबा, गोवा आने का, खाने का, पीने का और मस्त चिल मारने का, लेकिन दम दम बिल्कुल नहीं मारने का।

पहली नजर में मिला वह के अस्तु लवाया की मशहूर कोरियन सीरीज से कहीं मनाफवा लवे ए डिलाइटफुल गर्ल हूँ योंग क्या सीरीज है।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: नुआदी एक मेगाहर्ट्ज़ दिवे एफएम अब अदुस एम मेगातुगा
2: राज्य हिंदना

0: बिल तो दक्कम फसे है गोते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला ददु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस देबे वायरु बिल नु देखी गेंग लारी वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने हुरी हा डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही
1: आमगोते गाहने की वारंग हंदाने ते मी है बायद वस्तो खांग अने बायद वस्तो फोनों अंजे मेल तब फोनों बर्थडे से ही हंदान कुरंग अधि माँ उन्दोगु कमे एका मुको बिल ता दक्कन ता दुवा हकुए संदान नुन ते ने करंट बिल फेम बिल फोन बिल कस दाहिन नुवान हंदान विसुरे वगुतुं वगुता फाही पे मेदुरी को फ्यासा वेस ट्रांसफर कुरेवे क्या गें बिल कंडा लाफा पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोनवे साड़ी दो गेम में रीचार्ज वेस हम फाही पे अनलिमिटेड रीलोड अधि रास्टस ऐसा के हो रहा मामला ते फाही पे में दोरी को फाही पे वारा फाही

इमेज खराब, काम गलत, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: सीन मूवी मूड का मिखा सुवा तक के ऐस ताड़े ही तंग एरी ता
1: अस तो ही तकड़ना है
0: अस ही तकड़ना
1: मैं रसवा को तक इंगे दीवे ही हम हुरी हाफ फिल्म का लगो तक बेली फोन नाड़े देन एहम फिल्म तो के मंजर तो मिजो थी कि आधे वर काटने बोडंग अन्नड़ी न्यूमा फिल्म का मंजर तो न्यूमा उड़े थी
0: एको साजा का वागो तो मिजो मिखिया
1: हां साजा का वागो कम न्यूमा के समय का एब्यूसिव गोटक टाइड नणी सो हम सेम थिंग अन्नड़ी हम ए फिल्म तो के मंजर तक आए
0: थे ओके मां बड़ा मिक्स अप वे फॉर दो
1: हां
0: okay ema demme oti yes or no round engenge mizu deena film ga mi wa kantatoge statement e dinima hasin bunami mi statement ki rangal statement e to nu to rangal nuniya ko ba to rangal gotaki engenge
1: okay
0: pratama sawal ki lufshan nuata zaid em pratama rasha fabag engesa rahmatriya ya demi hu hindi lave ki fashan
1: ah yes
0: e lave ki dil to pagal hai dil deewana hai elawa
1: no
0: kon lave
1: कुछ कुछ होता है
0: वो वारा बराबर इंगे दे में जायद के फरा तो हदीया फोन वाने री माया ए फोशिगन गोंडनी सेंट फुलिए
1: नुबे
0: कोचे
1: शैम्पू
0: मीची अंदागे पर तो अहमागे लोन डक्का खलास कुरन जे मुद्दत का दीफेनी एंग आहार
1: रंगळ
0: रंगळ
1: एम मस
0: अहम्मा देखा बाबरा अनिया कोरमु थिबुना एक हसीन कुरीम वाह देखी रुगा जायदो आवाह के दक्कन हुरे तम फेनिंग गियांग ऐस्वरा रुलियास के सवाल तक एक कुरम फशाने कोफे ना आफले कां हुरे फहाने एफओ एप्पल ले दो एफओ कोचिंग है ये बुनीमा अरीमा बुना ने एफओ एप्पल ले देन देवन फहरा एफओ अनेका विस कोचिंग है हीमा रीमा बुननी एरोप्लेन कमा
1: रंगलो
0: रंगलो
1: ओ नुबे
0: कोच के बुनानी
1: एफओ आफा दे बुनानी
0: एफओ एप्पल बुने हाँ देख ते वने रोमु रोमु एफओ असलो एफओ इन किया अच्छी आने अहम मक्कियों बम बेनो भी किए कहेंगे ता
1: एकीवा
0: एफओ अहम माँ बुने तो ये ना के दो तो कब से इन्ना में कि अहम माँ है बुनो भी किंग एफओ कोचिंग है बुनी मा रिया माँ ब्रेन एफओ एप्पल ले ते वने फार ब्रेन एयरप्लेन के नो इंगे ते वने फार ब्रेन एफओ एप्रिकोटे
1: हेंता
0: ओके इंगे देन बीबे मी निम्माले यस सो नो राउंड ओके देन ओते लवता को इंगे लवता रीती ता
1: मारे रीती मारे रीती लवता मारे रीती हां कुरी के दिवे लवता मारे रीती
0: मी दे लवता को सुवा को फिया इंगे न ता
1: यस इंगे न
0: आदि आने का मारा कॉन्फिडेंट है हमा
1: कॉन्फिडेंस इनन जेन दो
0: अब हां यस ओके फुरत में सवाल की फिल्म के में फुरत मारने लवे की
1: तुम सजा फिल्म के
0: ता हां आ सजा के वाके में दकनी हुस
1: एम में फुरत मारने लवे की हम फिल्म के सॉन्ग गए न्यू माया जाइदा उले ने लगा लुफ शान दे मी हो ने महोना ने येलो कुला गे चलन करने रंगड़ा तमे की
0: दे रंगड़ो खने हम लवे के डांगस तो मी जुबे नो वणी दो

0: ओके देमति जायदा रीमा एका को आनिका को देके लोबवावा के बुना हिसाबों अन्न लवे इंगे ता
1: नेंगे
0: नेंगे लवे अगर अंतर नेंगे नी दो
1: आ
0: मिसाल का मेजो इव्वा लफिया मु मी कों हिसाबे गन्ना को लवे क इंगे ने ता
1: इंगे दान
0: दा लेट्स सी दो ए मेजो इव्वा ना इंगे इवीमा इंगे तो बलमा अरे

0: ने वाणी मी रंगळा त मी दिए मी जवाब त देऊन त दे हासी
1: ने हा रंगळण
0: ए हा रंगळण
1: अलो ए सूर्या फिल्म त के वणे मे सवाल कोरीला
0: ए मी
1: बेदी हुरिया फिल्म ए वणे ए बे मे रस यूसुफ के स्थान कोले
0: या रब्बी यार ए मे मारा बडो मिस अप बेदो तीनी एकम सजा गे मे खमदा फिल्म वा के नु मी दकणी मी जो मे एकम सम मिक्स अप फी दो मा
1: मिक्स अप या
0: अलो बला ले
1: ए हम वारा गिन फिल्म त कामो दे हम मजाक बिरर फिल्म त के तेरे हुने 4426 हम वारा कमदा फिल्म
0: देम दिवे फिल्म तो गबड फेड ने हे बिजनेस वाल तक रफे शे मोरी हा फिल्म के मंजर एकवा फे शे म ए तो बि तो जवाब दे तंग को उंदग वे कमको बाय तंग को हंदा ममो वे सिंगर जे दो अफार बे मिजो बुना नोवन फार बला ले
1: बेचे त
0: मिजो वे कुरे सवाल तक विस ने बला लचे
1: यस
0: इंगे हसीन वारा बडे शुक्रिया इंगे
1: शुक्रिया
0: मिजो मंगे मूवी मोड गा फीचर को ल देंगे हसीन म दे हसीन के वारा मसे के तिर प्रोड्यूस एगो तो फेर ने तिगो तो गबल्स कोरिया दान को मे उम्मीद करे ने सिंगे
1: यस
0: ओके थैंक यू वारा बडे इंगे हसीन
1: ओके
0: मैं हफ्ता के मूवी मोड शो नी माला फकी वेलान अस्सलाम वालेकुम

0: මුණියවස් විදුවාදම නුවදිහ එකෙන්ම ගහටස් දිවෙහි එම ටියුන් කොඳම.
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

कागज चिर चुन चिर चुन बिखरता एक मंजर, पलकों पे झिलमिलाता एक आंसू, गहरा सन्नाटा।